तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहका जोगी सुनत्या बंजेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम रंजन काया काया का सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोकरे संसार चोरां जारां तै कुड़ियारां खराबां बेका एक होंदा खाए चले थाओ तिना पीका इका जथल जिया पूरियां लोआ आया कारा एका कोई जखे सो तोहे जाने तिना पीती री सा नानक भगतां।

0: महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा बिसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ उगे पूर नानक बखाने बेनती विधवाच कूड़ कूड़ महला पहला
1: सचता पदानिए जरदय सचा होए कूड़ की मरुत रे तन करे हच्छा तोई सचता प्रजानिए

जगत मुझ ओ जे अभ्यास कर जहिन रसकित फल फिके फल बक बके कम नवे पत मिठत निवे नानका गुंच गई तत सबको निवे आपको पर को निवे ना कोई तट राजू तो लिए निवे सौ गौरा हो अपराधे दुना निवे चो अंता मृे गाहे शीस निवाइए क्या थिए जरी देख सुदे जाहे महला पहला।

0: जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए।
1: एक बार फिर समझ लेना, क्योंकि कोशिश ये होंगी है भी जो विचार हो रही है आपनों भी समझ आ जाए तो जिहड़ा सुन रहा उन्हों भी समझ आ जाए। तो जे अपने आप नूं नहीं समझ आई तो सुनने वाले नूं भी समझाउणा औखा हो जाएगा। पहले श्लोक विच महाराज ने कहा सब कुछ हुक्मे आमदा सब कुछ हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बूझै जिसनों कृपा करे रजाए। महाराज जी तुसीं थोड़ा जा खुलासा करके ते सानू नाम भी जिहड़ा वो गुझा भेद खोल दिओ, जिहड़ा गुझा भेद है ना इहदे विच उह खोलो। फिर दूजे श्लोक च महाराज ने भेद खोल के जोगी का नाम लै दिता भी आ जोगी की गल कर रहा मैं, उहदे जिउण की जुगत की गल कर रहा भी उहदे जिउण का तरीका की है। आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज 15 भगत साहिबान बैठे है, ये सब तो बड़े जोगी ने, इन्हों तो वड्डा जोगी कौन हो सकता है, इन्हों तो वड्डा सिद्ध कौन हो सकता है दुनिया च। जे असी पूरा देखिए तो 35 जोगी बैठे ने जिन्हों तो वड्डा दुनिया च कोई नहीं। इसलिए महाराज जी कहिंदे ने सो जोगी जुगत सो पाए, वो जोगी है उही जीवन जियाच जड़ी जीवन जाच उही सिखदा है जुगती जिसनों गुरमुख नाम प्राप्त होए। जोगी कौन है ते जोग वाली जुगत किदे कोल है, कहिंदे जिहड़ा गुरु दे सन्मुख हो के नाम दी प्राप्ति कर लैंदा है। फिर थोड़ा समझ लियो, बाहर जोगी बनन लई मुंदरा चाहीदियां पिपूती चाहीदी है भगवा बस्त्र चाहिए करमंडल चाहिए। जोगी बन गए तुसी मुंदरा पा के पिपूती मल के हाथ च एक करमंडल पकड़ लो भगवा कपड़ा पा के ते बाहर निकलो, जना खना कहेगा जोगी आ गया जोगी आ गया। सौखा है, जिहड़े महल्ले गली च जाओगे वो कहणगे जोगी आ गया जोगी आ गया, सौखा है ना। पर जिहड़ा अंदर वाला मन करके जोगी बनना है उहदे लई जुगती चाहीदी है, वह जुगती गुरु महाराज ने देनी है। जपजी साहब की बाणी च आपां रोज पढ़दे हां, हुणे भी तुसीं सुणिया है खिंथा काल कुवारी काया जुगत, काया नूं कुवारा रखना एक जुगती है। कुवारा शब्द कित्थे वरतदे हां, जिहड़ा अनमैरिड होवे जिहदा विआह ना होवे, असीं कहिंदे वी इह तां हजे धी कुवारी है इह हजे मुंडा कुवारा है। कोरा भी इहदा अर्थ हुंदा है कोरा। महाराज जी काया नूं कुवारा किदां रखीए, गृहस्थ विच रह के भी धीआं पुत्तर वाले हो के भी दुद्ध पुत वाले पोते पोतियां वाले हो के भी असीं कुवारा रखना है अपने आप नूं, इह किवें हो सकदा है। महाराज कहिंदे कुवारा दा मतलब है आ जुगती बना कि तेरे अखां विच मैल ना होवे, तेरे कन्नां विच मैल ना होवे, तेरे नेत्रां विच परत्रिया रूप ना पेखै नेत्र, तेरे कन्नां दे विच किसे दी बुरियाई निंदिया चुगली सुनन वाली मैल ना होवे, इन्हां नूं कुवारा रख जे मन दा जोगी बनना है तां। अपनी जबान तो कोई माड़ा भैड़ा कौड़ा शब्द ना बोल जे तू जोगी बनना है तां, हत्थां तो किसे दा हक ना खो ना मार जे जोगी बनना, पैरां दे नाल तू माड़ी संगत माड़ियां थावां ते नहीं जाना जे तू जोगी बनना है तां, चरण चलो मार्ग गोबिंद हत्थां नाल सेवा कर भले दे कम कर, कन्ना नाल तू ए सरवणो मेरियो सच है सुनने नू पठाए, रसना तो उदा नाम पाक पवित्र अल्लाह दा परमेश्वर दा नाम लै कोई माड़ा शब्द ना होवे। आ वाला जड़ा है ओ अपनी काया नू कुवारा रख फिर तू मन दा जोगी बन जाएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਵਾਰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੈ ਕੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈ ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੋਈ ਦੱਸਦਾ।

नगरी सब को वसै, नगरी कड़ी है आ शरीर, ये शरीर दे अंदर। महाराज कहिंदे तिस जोगी, ओ जोगी जिन्हें गुरु दे राही नाम दी दात प्राप्त करके नाम दी कमाई कीती है, जोगी बनन लई जिन्हें सुरत मत मन बुद्ध नू घड़ लिया शब्द दे नाल, ओ जिन्हें घड़ लिया ओ जोगी है। सुरत मत मन बुद्ध नू फिर उदी नगरी विच सब को वसै, सब मतलब सारे शुभ गुण उदी नगरी विच वसदे आ, उदी नगरी च एक भी अवगण नहीं हुंदा, वो पखंडी नहीं हुंदा, वो दिखावे वाला नहीं हुंदा, वो दिखावा नहीं कर रहा हुंदा, उदे अंदर

सूक्ष्म रूप भी आप है और पसार दे रूप विच भी तू आप है। सरगुण भी ते निर्गुण भी, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। वाहिगुरु शरीर विच भी तू है, जो शरीर ये हरकत कर रहा, आत्मक तल ते भी तू आप है, बीज भी तू आप है ते फल भी तू आप है। आपे सूखम पालिए आपे पसार, ये सारा पसारा भी तेरा अपना ही जड़ा वो कीता होया है। ना दिसन वाला भी तू है ते दिसन वाला भी ये पसारा।

चातुर करम पाया तुझन को से नाम हर कह लागे कह नानक तखोआ तित कर अनहद वाजे आनंद।

ख्वार हुए सा मिलेंगे, बोले सोनिहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

भवदुःखे सचे पातु सां मल जनम जनम दी कटिए सजन सचा पातु साहो सिर सहा देसा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा हो सतनाम

जिन कार्य सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जप हो सुख फल हर जन पाव हो नानक कहे सुनो जन पाई सुख सोहे लड़ा हर त्याव हो।

बिटहौ जिन कारज सब सवारे, हर प्रव कृपा कर हर जप हो, सुख फल हर जन पाव हो। नानक कहे सुनौ जन पाई, सुख सुहेलड़ा हर त्याव हो। सुन हर गुण पीने सहज सुपाए, गुरमत सहजे राम त्याए। जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा। अंदरों दुरमत दूजी खोई, सोजन हर लिव लगा। जिनको कृपा कनी मेरे स्वामी, तिन अणदिन हर गुण गाए। सुन मन भीने सहज सुपाए, जुग में राम नाम निस्तारा। गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा। जिस कृपा करे सो पाए, सहज गुण गावे दिन राती। किलविक सब गवाए, सब को तेरा तू सब ना का। हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा। साजन आए बुठे घर माही, हर गुण गावे त्रिपत आगाही। हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख न लागे आए। दैदस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम ते आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े,

नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नहीं। साजन आए बुठे घर माही। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सुहास जगत्र गुरु की पारस पेट परस करेओ रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरियो।

मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख उल्टत जात बिरख की छारों दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो।

आवद कट्यो न जात, आवद कट्यो न जात, प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंदियो न जात, बिदे मन दर्श मग पावक जरियो न जात।

जाग और नया है महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए अब ब्रह्म कोटक दूर गए।

बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानियो पयो त संसर सोई तरन गगन नव खंड में

दरे गावे इंद्रात भक्त प्रहलाद के आत्म रस जिन जान्यो कब कल सुजस गा।

जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवारण हरा उन्ना की रीस करे सो विगुचै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौंक मुए बिल लाई आवे जावे ठौर ना पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साच समाई।